पहुंच कर न हो लौटना फिर वहां से, पहुंच कर न हो लौटना फिर वहां से, वहीं रह के हो जा

सुनू मैं नाम तेरा धड़कनों में, इन एवरी बीट ऑफ माई हार्ट आई हियर अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, द हार्ट इज बीटिंग, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, एंजॉयमेंट, द पर्सन विल गेट एन एंजॉयमेंट, ही विल गेट एन एंजॉयमेंट, ही विल गेट एन एंजॉयमेंट.